0: हेलो यू लॉस्ट दैट प्रीटी स्माइल ऑफ योर्स एवर सिंस यू केम आउट फ्रॉम द मैनेजर्स ऑफिस. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम.
1: नो नो आई एम फाइन.
0: लुक whoever it is, just chill and bring back those beautiful smile of yours, because it's needed here. I'm sure that's one of the reasons why you're giving this post.
1: Once again, you're welcome to Brooks Monument Bank.